गावै को जापै दिसै दूर, गावै को वेखै हादरा हदूर। कथना कथी न आवै तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगां जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हो

देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखी जित दिसै दरबार मुहो के बोलन बोलिय जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाउ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानी सब आपे सचियार थाप्या न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावी है गुणी निदान गावी है सुनिए मन रखिए भाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हों जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीर्थ नावा जित सुभावा पिण भाणे के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विण करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चलै सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोए ना सुझई जे तिस गुण कोए करे सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने धरत धवल आकाश सुने दीप लो पाताल सुने पोहिन सकै काल नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नाश सुने ईश्वर ब्रह्मा इंद सुने मुख साला हनुमंद सुने जोग जोगत तन भेद सुने शास्त्र सिमरत वेद नानक भगता सदा

करह कहानी, करह कहानी अकथ केरी, कित द्वारा पाई है। तन मन तन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्या पाई है। हुक्म मन्यो गुरु केरा, गावो सच्ची बाणी, कह नानक सुनो संत हो, कथियो अकथ कहानी। ए मन चंचला, चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किने, तू सुन मन मेरिया। ए माया मोहनी जनेत परम भुलाया, माया ता मोहनी तने कीती जिन ठगवली पाईया, कुर्बान कीता तिसै विटो जिन वो मीठा लाया, कह नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एहो कुटंब तुझे देखदा चलै नाही तेरा नाले, साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ, ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताईऐ। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किने तेरा, अपना आप तू जान हे, जी जंत सब खेल तेरा, क्या गो आख बखाने, आख है तब वेख है सब तू है जिन जगतो पाया, कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन बसाया। जी जंत सब तो दो पाए, एक वेख परसन आया, लब लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया, कह नानक जिसनो आप तुठा तेने अमृत गुर ते पाया। भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी, बिखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना, खन्यो तिखी वालों निकी एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिन्नी आप तजया, हर वाशना समाणी, कह नानक चाल भगतां जुग हो जुग निराली। ज्यों तू चलाए हे तिव चलहै स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाए हे तिवै चलहै जिन्ना मार्ग पावे, कर कृपा जिन नाम लाए हे से हर हर सदा त्याव हे, जिसनो कथा सुनाए हे अपनी से गुरुद्वारा सुख पावे, कह नानक सच्चे साहिब ज्यों पावै तिवै चलावे। इहो सुहिला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सुहिला सतगुरु सुनाया, एहो तिनकै मन वस्या जिन धुरों लिखिया आया, एक फिर एक नेरे करे गल्लां गल्ली किने ना पाया, कह नानक शब्द सुहला सतगुरु सुनाया। पवित होए सेजना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया, पवित माता पिता कुटंब सहत स्यों, पवित संगत सुभाइया, कहन दे पवित सुन दे पवित, से पवित जिनी मन वसाया, कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहजन उपजाय बिन सहजाय, सहसा ना जाए नै जाए सहसा कित संजम, रह करम कमाए सहसा जियो मलीन है कित संजम धोता जाए। मन तो बहो शब्द लागो, हर स्यो रहो चित लाए, कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजाय, ए सहसा उपजाए। जियो मैले बहरों निर्मल, बहरों निर्मल जियो ता मैले, इतनी जन्म जूए हारिया, ए तिसना वड्डा रोग लगा, मरण मनो विसारिया। वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही, फिर ज्यों बेतालिया, कह नानक जिन सच तजिया, कूड़े लागे तिन्नी जन्म जूए हारिया। जियो निर्मल बहरो निर्मल, बहरो ता निर्मल जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचे नाही, मनसा सच समाणी, जन्म रतन जिनी खटिया भले से बन जारे, कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहै गुर नाले। जे को सिख गुरु सेती सन मुख होवै, होवै ता सन मुख सिख कोई, जियो रहै गुर नाले। गुर के चरण हिरदै त्याए, अंतरात्मै समाले, आप छड सदा रहै परने, गुर बिनवर न जानै कोए, कह नानक सुनो संतो सो सिख सन मुख होए। जे को गुर ते वे मुख होवै, बिन सतगुर मुक्त ना पावै, पावै मुक्त ना होर थे कोई, पुछो विवेकियां जाए। अनेक जुन जूनी परम आवै, बिन सतगुर मुक्त ना पाए, फिर मुक्त पाए लाग चरनी, सतगुरु शब्द सुनाए, कह नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी,

कुर्बानी। बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरना।

मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी मैं तुझे आगे अरदास मैं होर थाओ नहीं जिस पै करो बेनंती मेरा दुख सुख।

दया करहु किछु मेहर उपावहो डुबदे पत्थर तारे सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सखी इच्छ करी नित सुख मनाई

0: मल कौड़ा कश्मीरी ते कुंजाही ने, मल कौड़ा कश्मीरी ते कुंजाही ने,
1: लच्छी राम चौथा लिया है रे, लच्छी राम चौथा।

मूर्ख मुग्धा जन पया पनवत नान तिनकी सरना जिंतु नाई विसरिया आसा महला पंजवा पई प्राप्त मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की एतरी बरिया अवर का तेरे कितना काम मिल सात संगत पंच केवल ना शरण जान लाग पवज तन कै

कबियो बाज बेनती चौपई अमरी करो हाथ दे रचा पूर्ण होए चिदगी इच्छा तब चंदन मंद रहे मारा अपना जान करो प्रतबारा हमरे दुष्टवे तुम का भो आम आदे मोहि बचावो सुखी बसे अम्बोरो परवारा सेवक से सब करतारा मोर चा निज कर दे करिया सब भरन को आसंगरिया पूर्ण होई हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें चार कोई अब न त्याओ जो बचाओ सो तुमते पाओ शिव से कमारे तारी है चंच सतन मारे मारी है आप आदे मुझे उबरिया मन का त्रास निवरिया हुजो सदा मारे पचा श्रिया सतोजू करियो रचा राख लियो मोहरा कन्हारे साहिब संत साहिब प्यारे दीन बंद चुन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बवतरा काल पाए सिजु अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सगल काका किया तमाशा जमन का जोगी से किया वेद राज ब्रह्मा ज्योतिया जमन का सलो स्वारा नमस्कार है ताई हमारा जमन का सत बनायो देव दैत जचन बजायो आदि अंत के अवतारा सोई गुरु समझ हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सगल प्रजाजनी आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दिया।

चीटी दे कुंच रसूला सब पर कृपा दिस कर भूला संतां दो पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी यह के की पीर पहचाना कट कट के बड़बड़ की जाना जब्त कर करा करता रा प्रजा तर तब दे अबारा जब आखर करतो कभो तुम्हें मिल तो दे दस भू जेते बदन से।

मां मूल कछ भेद ना जानता, मां देखो कै सदा सिवा, निरंकार का चिंतन पेवा, आप अपनी बुद्धि जती, बनंद भिन्न भिन्न तोहे तेती, तुमरा लखना जाए पसारा, कि बस जा प्रथम संसारा, एक रूप अनुसूपा, रंग पयो राव कई पूपा, अंडा जेर सिद्ध किनी, उत बिच कान बहु रजदीनी, कौ भू राजा वह बैठा, कौ सिमट पयो शंकर इकैठा, सिगरी सिट दिखाए अचम पवा, आज गास रूस यम पवा, अपरचा मेरी तुम करो, सिखो बार सिख संग्रह, दुष्ट जिते उठो तो पाता, सगल मरेश करो रनकाता, जी अस दूता सन्नी परे, तिनके दुष्ट दुख्त हवे मरे, भुख जन पग परे त्यारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को इक बात आए है, ताके का निगने है, सचाओं तै सब काला, दुष्ट अरिष्ट रे तत्काला,

दर्द दुष्ट दो तेरा कड़क केत मैं शरण तिहारी आभा दिल बारी सर्व ठोर मोह सहाय दुष्ट दोग ते ले बचाई सवैया

अनेक है माता एक ना मान्यो, सिमरत सातर बेद सबा बो भेद कह हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तो ही बखान्यो दोरा, सगल द्वार को चाड़ के गयो तुहारो द्वार। बाह गए की लाजसा गोविंद दास तुहारा, सगल द्वार को चाड़ के गयो तुहारो द्वार। बाहें के की लाजस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा, नंदे को उनका सतगुर प्रसाद।

सदा सिख ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाये वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवी प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाये अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निद आवै ताए सब थाई होई सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होई सहाय दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाह। पंजा प्यारियां चौहा साहिब जादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अणदिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाह। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाईयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुवासां नाल निभाही तिन्हां समूह शहीदां सिंघां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाह। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाह। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देख तेग फतह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाए खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाह। बख्शो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाह। आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो समूह गुरद्वारियां गुरधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे मान ने ताणियां दे तान ने ओटियां दी ओट धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर सोदर रहरास साहिब जी दे पाठ दी अरदास अखर वादा घाटा भुल चुक मुआफ करने सरबत दे कारज रास करने बड़ी सुनी बाणी दा फला देश दर आई संगत दे हिरदयां ते वसाउणा दर आई संगत दी हाजरी तिल फुल भेटा अपने दर ते प्रवान करनी सब नू अपने दरो घरो नाम दी दात गुर सिखां वाला जीवन चढ़दियां कला बख्शिश करके किरतार्थ करना संगतां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के घरां विच सुख शांति वरतौनी आपस विच प्रेम इतफाक दी दात बख्शनी किरत कमाईयां विच बरकतां पाउनियां कारोबारां विच वाधे बख्शिश करने शरीरक तौर ते तंदरुस्तियां बख्शिश करदिआं होइआं अपने दर घर दे नाल आप जी ने जोड़ी रखना सब दीआं हाजरियां दर ते प्रवान करदिआं होइआं पवित्र हुक्मनामे दी दात बख्शो हुक्मनामे ते चलण दी समर्था बख्शो सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिआ तेरा नाम चेतावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

हर हर कथा निराली रहा। हर के संत सुनो जन पाई, कुल से बहो बेग बिगाली। सतगुर सेव कर चन बद हो, मत जान हो आज के काली। हर के संत जपो हर जपना, हर संत चले हर नाली। जिन हर जपिया से हर होए, हर मिलिया केल किलाली। हर हर जपन जप लोच जानी, हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मेलो, हम साध जना पगराली। जन नानक संगत साध हर मेलो, हम साध जना पगराली। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।